काज अब कीजै है, काज अब कीजै होए, मांग सो लीजै है, मांग सो लीजै मुकट राम ते जो अहम पाय रो, जो अहम पाय रो, रातिक हाथ ना आन रो, हाथ ना आय रो, जब ते ता एह करते लीजै ता एह तब याली उपद शिन मह कीजै है, शिन मह कीजै है, पाय करते पर है, पाय करते पर चंद्र कुमार कुमार सुन हर तिज बेख बना जुन हो बेख बना जुन हो हर पिध आयो हर पिध आयो दिन शाम प्रम लख लीनो प्रम लख लीनो शाम कह एम उत्तर दीनो उत्तर दीनो सबैया बेख कियो हर पामन को हर पामन बावन जो शल बेख लवायो तू

ऐसा मिलेंगे बजे चरण जो उनके सभा मिले श्री ठाकुरा प्रसाद ढंका बाजे बने का नायक लंगरदार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भक्त जय वासुरंग सर्वदा सर्व जगत रुकालं प्रणाचित काल स्वरूप सदा संगे एवं अनुभूत देख देखो भजन सर्व वेद गया पदे जनान गुरु गोविंद सिंह जी तेरे काल की सहाय दरबार में तेरे दरबार सत्संग से अलंकार लक्ष्मी करी तुमने दरबार सब देवते का नमस्कार।

शीश पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आग को चरैया फल फूल को बचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूख सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीश वृक्षण सो माटी को बचैया बोल पूछ लीज जो कुसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोक सो नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो करत है एक पाए ठंडे सदा बन में रहत ब्रज फूक फूक पाव भूम श्रावक थरत है पाहन अनेक जोग एक ठोर बास कर काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है जैसे एक सोंग कहूँ जोगी अब राखी बन कब हूँ संन्यास वेश बन के दिखावई कहूँ पौन हरी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंजर औ गदहा अनेक ताप कार ही कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांस बीच चीर चीर चोर टाक ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो व्यपाई है तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के कियत जो व्यपायत जाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनल आकाश मछी डोल वो करत है आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बस के

आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर मूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मच केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच वच को करेंगे।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज मैं तेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहेंगे। कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है। के ते गंग बासी के ते मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुआ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जक जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बटे बोध हारे बुद्ध के प्रबोध हारे जापसी। घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार बूझ हारे पाहर चढ़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटलीब हारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बचाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

अजोनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछो रूप देखं कहा बासता को फिर कौन भेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानु कहे मैं नावे न रोगं न शोकं न मोहं।

न नेहं न गेहं स नेहं स नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भयनिर्विखादं अछेदं अभेदं।

रवि हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं।

देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु जोग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हर्ता कहु भोग त्यागं कहु राजसाजं कहु राजरीतं कहु पूर्ण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु आरबी तोर के पारसी हो कहु पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहु देश भाख्या कहु देव बानी कहु राज विद्या कहु राज

गान कीर्तन कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतन कहूँ ऋत विद्या कहूँ नाग बाणी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धे राजाधिकारी।

जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं प्योत बान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं परग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं।

कई गीत गान गंधर्व भरीत कई वेद शास्त्र विद्या वर्तीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं न एकता सपायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपदास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ रूप दीप कहूँ वर्गदान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उच्चार कई भजत एक बग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगर ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्प व्रजांत नहीं तदवतास पायत नांत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदवदेश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भो कुटो सर्व धर्माभिहीन।

लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान परे। जय फोकड़ धर्म सफ़ेद तज है एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं।

है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास जीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पत्र जानी है, नराग रंग रूप है, नरूग राग रेग है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है, न तात मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अधिक से गेग है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेष

गंज आद देव है कहो सो कैस पाई है। जिमी जमान के विखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानी है, मकीन है और मकान है, प्रमाण तेज मानी है, न देह है न गे है, न जात है न बात है, न मंत्र है न मित्र है, न तात है न मात है, न अंग है न रंग है, न संग है न सात है, न दोख है न दाग है, न द्वैग है न दे है, न सिंह है न स्यार है, न राव है न रंग है, न मान है न मौत है, न साक है न संक है,

राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है। न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेग है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है। न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न रूप है। परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है। अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है। न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है। न शीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है। न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है।

है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अवेक है, बलि अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम विज है, सदा छिज तेज मानिए, न आद है, न व्याद है।

सेध नाम सहंस वरण है नेत पूरण होत। सोद सोद हटे सफय दुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब। पड़त पड़त थके महाकप गढ़त गाड़े अनंत, हार हार कहियो सबू।

काय गाय धके सब गुण चक्रत बेमुख चार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन

सहति सन्नाहन वष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय ऊसे मैखा सुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर जमकारण छिछुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विवृदंते जोग जयंती मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन वृष्ट विनाशन वृत्त मथे कावरू कुमारे दम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन।

से रक्ता सुर खंडन शंभ चक्र तन शंभ मथे बारज बिलोजन वृतन विमोचन सोच पिशोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे शुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आदय नाद अगाध ऊर्धं

तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते बसार जद्दा बभूतन भय अनंत तव कहो जथामत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जे नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच की नो बना सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाय मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंशिज तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्वै ना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामर कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जलधल प्रभाव सर्वत्र साथ जेह जात पात नहीं भेद भरम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जेह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भी कहे नाम तास है कवन जात जेह शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जेह चक्र चिह्न नहीं रंग रूप जेह खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव

मनो कर दे कर पाप संभोह न भेटन पावे। और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज सके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुर आनंद से रुमन आर्य से सब हो मिल गायो। वेद गतेव न भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमित जगह सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान भेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाय सके अन भेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाद वेख अद्वेख जप्यो तिन ही कुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया सिद्ध छत्र के धरैया छत्र धार्य के चलैया महासतरण के साल हैं। दान के देवैया महामान के बटैया अवसान के देवैया हैं कटैया जम जाल हैं। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्ध था के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय जावे। गुर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे। अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने गंधारी गुरे सी जाने। पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरे मन सो तपस्या करे। दृढ़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रुहेले माघ देश के मंगेले वीर बंग सी बुद्धेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस ने आवे देव तिथे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे धायो तिन्ह पूर्ण प्रताप वायु सर्व धन धाम फल फूल सिंह फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन सादा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है। अपार कहियत है हथे की पुकार बल पाछे पहुँचत है। चिटकी जिंघार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है। कहते सस राशि कहते सूरज प्रकाश कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महादीन कहते व्यास से प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जछ कहियत है। करते है विचार पैना पूर्ण को पावे पार ताहित अपार निराधार लहियत है। पूरा अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार वह अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जाद जागी बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है।

है गनी मन को गारक है, साधन को रचक है, गुणन को बहार है, सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है, काव को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है, गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है, काल हूँ के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है, योग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है, देवन को देव है निरंजन अभेव है, या देवन को देव है के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजा